Elambu FM 89.6 MHz. हेलम्बु FM 89.6 MHz मा अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ हेलम्बु खबर।

0: Watch my biggest blockbusters online, anytime, anywhere on erosnow.com.
1: सलमान खान की कॉमेडी, रोमांस और एक्शन मूवीज एंजॉय कीजिए। अपने फोन या आईपैड से इसी वक्त साइन अप कीजिए और फ्री में देखिए सिर्फ इरोस नाउ पर।

0: बच्ची ये क्या कर रहा है तू?
1: क्या हो रहा है भाई?
2: पापा रोमांटिक सीन
1: लिख रहा हूँ यहाँ इस तरह बीच सड़क पर नाच कर
2: फील कर रहा हूँ।
1: अरे फील क्या कर रहा है डफर, सब लोग देख रहे हैं।